0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

तेरा मेरा रिश्ता क्यों है वो बेमागे सब दावे मुकद ओयाई मागे जीवित है तुम मेरी जिंदगी हो